ये यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो है, सरकारी ज़राए से आपकी ज़बान में सेहत की मोतबर मालूमात। सरकारी ज़राए से सेहत की ताज़ा तरीन मालूमात ये हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से WHO के डायरेक्टर जनरल ने सेहत के निज़ाम की फराहमी, हंगामी इमदाद और ज़हनी सेहत को आगे बढ़ाने पर मजबूत तआवुन को तस्लीम करने के लिए उर्दन का दौरा किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रियासतहाए मुत्तहिदा के इनखिला के नोटिफिकेशन पर WHO का बयान। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डेविड नाबारो को खराज तहसीन पेश करना। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक दवा की याद, SV लीप स्ट्रेंटो कॉर्पोरेशन बेंजोल पेरो ऑक्साइड वॉश, यू सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस 10% को वापस मंगवा रही है, जो A5FLOZ 148 मिलीलीटर बोतलें NDCO 5361261163 और B8.5mBOT FL में पैक की गई हैं। वजह, हालात की मसनुआत की माइक्रोबियल आलूदगी। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक फूड प्रोडक्ट याद, टोड्स LLC टोड्स सीड सैलड स्प्राउटिंग मिक्सचर, ब्रोकली, मस्टर्ड, अल्फाल्फा और कैबेज को वापस मंगवा रहा है, जो गर्मी से मेहरबंद थैलों में पैक किया गया है। वजह, मसनुआत में फराहम कुनिंदा की तरफ से वापस मंगवाए गए अल्फाल्फा बीज होते हैं और ये ईकोली और या साल्मोनेला डाउनस्ट्रीम रिकॉल से आलूदा हो सकते हैं। रोजमर्रा की गिजाइत, मुतवाजन गिजा तरक्की, तवानाई और मजबूत मुदाफेती निज़ाम की हिमायत करती है। हर रोज मुख्तलिफ किस्म के खाने शामिल करने की कोशिश करें। फल और सब्जियां, सारा अनाज, फलियां या प्रोटीन के दीगर ज़राए, मीठे मशरूबात, नमक और बहुत ज्यादा प्रोसेसशुदा खाने की अशिया को महदूद करें। छोटी मुस्तहकम तब्दीलियां पायदार सेहत में इजाफा करती हैं। मच्छरों से फैलने वाली बीमारी की रोकथाम, मच्छर मलेरिया, डेंगू और दीगर बीमारियां फैला सकते हैं। कीड़े मार दवा से इलाजशुदा जाल के नीचे सोना, घर के आसपास खड़े पानी को हटाना और रिपेलेंट का इस्तेमाल आपके खतरे को कम करता है। अगर आपको किसी ऐसे इलाके में तेज बुखार है जहां मलेरिया होता है, तो जल्द टेस्ट और इलाज करवाएं। इब्तिदाई देखभाल जान बचाती है। हम किस तरह तस्दीक करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो पर हर तबका सेहत के सरकारी हुकाम की अवामी तौर पर दस्तियाब रहनुमाई से बनाया गया है और नशर करने से पहले उसका जायजा लिया जाता है। हम हकायक या आदाद शुमार ईजाद नहीं करते हैं। जब हम हेल्थ अलर्ट का इश्तराक करते हैं, तो ये एक नामजद सरकारी जरिया से आता है। आप universalhealthradio.org पर मजीद जान सकते हैं। हाथ धोना, अपने हाथों को साबुन और साफ पानी से धोना बीमारी से बचने के आसान तरीन तरीकों में से एक है। अपने हाथों के तमाम हिस्सों को कम से कम 20 सेकंड तक साफ करें, खास तौर पर खाने से पहले और टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद। अगर साबुन और पानी दस्तियाब नहीं है, तो अल्कोहल पर मबनी हैंड रग भी काम करता है। साफ हाथ बहुत से इन्फेक्शन के फैलाव को रोकने में मदद करते हैं। इसहाल और जबानी रिहाइड्रेशन, छोटे बच्चों के लिए इसहाल खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे जिस्म में पानी और नमकियात की कमी हो जाती है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जैसा कि हिदायत के मुताबिक मिलाया जाता है, इस खोए हुए सयाल की जगह ले लेता है और जिंदगी बचाने वाला हो सकता है। बच्चे को सयाल और दूध पिलाते रहें। पाखाना में खून, बार बार उल्टी, धंसी हुई आंखें या बच्चा पीने से कासिर होने की सूरत में फौरी तौर पर देखभाल करें। नौजायदा को दूध पिलाना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पैदाइश के बाद पहले घंटे के अंदर दूध पिलाना शुरू करने और पहले 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध पिलाने की तजवीज़ करती है। माँ का दूध बच्चों को इन्फेक्शन से बचाता है और मुकम्मल गिजाइत फराहम करता है। दिन रात मांग पर खाना खिलाना, अगर खाना खिलाना तकलीफ दे है या बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, तो किसी हेल्थ वर्कर से मदद तलब करें। ये सेहत की मालूमात है, तिब्बी मशवरा नहीं। ये यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो है, सरकारी ज़राए से आपकी ज़बान में सेहत की मोतबर मालूमात। सरकारी ज़राए से सेहत की ताज़ा तरीन मालूमात ये हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से WHO के डायरेक्टर जनरल ने सेहत के निज़ाम की फराहमी, हंगामी इमदाद और ज़हनी सेहत को आगे बढ़ाने पर